कहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबाच बेंती चौपाई।

जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जुथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल

घट घट के पट पट की जाने, जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब धारे आप अपनी बूझ उचारे।

सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तेहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक महे हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों

अनेक कहें मत एक न मान्यो, स्मृत शास्त्र वेद सबे बो भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो है बखान्यो। दोहरा

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां।

दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे

मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावै जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो तम संसार चरण लग तरिया

0: थक पराया
1: जोड़ जोड़ के धरदा माया,
0: मार मार के हक पराया
1: जोड़ जोड़ के धरदा माया,
0: पछतावेगा आया कर बे।

समस्ति स्वरूपे ब्रह्मंगी ब्रह्माथे समस्ति विबुद्धे कलंकं विना ने कलंकी स्वरूपे नमो राधेश्वरं परम रूपे नमो जो जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राधेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रपाणि नमो परम गाता नमो लोकमाताय अपेक्षीय परमीय भोगीय भुक्ते नमो जो जुगेश्वरं परम जुगते नमो देता नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोहर्ता नमो नारूपे नमो साह नमो भूपे नमो दानदाने नमो मर्माने नमो रोग रोगे नमस्तनिशनान नमो मंत्र मंत्रं नमो जन जंतरं नमो इष्टिष्टे नमो

पौड़ी सच्चा सब एक तुझ सच्चो सच वरताय जिस तू देह तिस मिले सतात निहज कमाया सतगुर मिले सच पायन के हृदय सच बसाय मूरख सच न जान ने मनमुख जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे

पौड़ी तुरे पलाने पौड़वे करंगी रम सवारिया कोठे मंड माडले बट कृपा सारिया चेज करण मन पांद्र पुजनाई हारिया कर फुरमाश खाया वीक महल तमरण विसारिया जराई जो बन हारिया।

स्वयनी सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन सेवा करदियां होईयां फुलां चुका दी खिमा बख्शनी है जी। महाराज ते संगत बख्शन जोग बख्श लेना जी। सहुण आप जी दे सन्मुख भाई साहब भाई गुरु सेवक सिंह जी आप जी नूं अज दे पावन पवित्र मुखवाग दी कथा विचार आप जी नूं सरवण कराउणगी जी। सो आओ ना पासो आपां गुरमत विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।